सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Brought to you by
5: Sona Yulia Granular.
6: सिंध हिक आहे हमेशा हिवादत खिलाफ़ थींदड़ साज़िशनि ऐं धरतीअ जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ हिकु भेरो ॿीहर यकराव ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। सिंध असेंबलीअ में नवनि सीनियर थियण वारे एमपीए निसार कोड़ो सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ ठहराउ पेश कयो, जेको ऐवान यकराव मंज़ूर करे वरितो। ठहराउ में चयो वियो आहे त मुल्क में नवनि सूबनि इंतज़ामी यूनिटनि जे हवाले सां नए सरबेस्त शुरू थी वियो आहे। अहिड़नि तजवीज़नि जो असर सिंध ते पइजी सघे थो। सिंध हिकु तारीख़ी तहज़ीबी ऐं आइनी सुञाणप रखंदड़ खितो आहे। सिंध जी सुञाणप ऐं इलाक़ाई तसलसुल सदियूं पुराणो आहे। सिंध अणटुट सूबे जी हैसियत सां पाकिस्तान में शमूलियत इख़्तियार कई हुई। ही अहवान हिकु भेरो वरी सिंध जे इम्कानी विरांगे खे सख़्तीअ सां रद्द करे थो। निसार अहमद खोड़े पारां पेश कयल ठहराउ जे मतनि में चयो वियो आहे त सिंध असेंबली छह भेरा ठहराउ मंज़ूर करे सिंध जे इम्कानी विरांगे खे रद्द करे चुकी आहे। आइन में वाज़े आहे त सूबे जूं हदूं तब्दील करण लाइ लाॻापियल असेंबली मां ठहराउ मंज़ूर थियण

सिलसिले डिवीजन जा इलाके के धारकरण या वफाक निज़ाम के मातहत रखने के रद्द करे तो सूबा असेंबली सिंध के हदन में कहीं भी किस्म की तब्दीली की इजाजत न थी दे ऐवान वाज़े लफ्ज़न में ऐलान करे तो सिंध एक है हमेशा एक ही रहती।

एमपीएम वारा सिंध जो विरांगो नथा चाहिन तैवान मां भजी छो विया। नवनि सूबनि जो फैसलो टीवी प्रोग्रामनि ज़रिए न पर असेंबली में थियणो आहे। ख़बर पइजी वई त कहिड़ा माण्हू सिंध जे विरांगे जे ख़िलाफ़ आहिनि ऐं कंहिंजो मिटो मयार आहे। टीवी विकिणे बंदूक खणण जी ॻाल्हि कंदड़ लीडर ख़बर नाहे हाणे किथे वेठो आहे। सिंध जे वहदत ते मिटो मयार क़बूल नथो करे सघिजे। ख़बरदार करियूं था त कोई असेंबली बि सिंध जे विरांगे जी ॻाल्हि नथी करे सघे। वरी वज़ीर सैद मुराद अली शाह जो सिंध असेंबलीअ में ख़िताब। वरी वज़ीर चयो त लाहौर में वफ़ाक़ी वज़ीर निज़ाम तबाह थियण जो चयो। बिज़नेसमैननि ताड़ियूं वॼायूं। छा हाणे अरबपति बिज़नेसमैन नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो कंदा? समुझ में न पियो अचे सिंध असेंबलीअ में मौजूद मुबैना पीटीआर वारा हिदायतूं कंहिंखां वठी रहिया आहिनि। पीटीआई वारा असांजे साम्हूं अची चवंदा हुआ उहे सिंध जे विरांगे जे ख़िलाफ़ आहिनि।

पर पीपी वट नाकामी लिकाण लाइ बियो कुझ न हो। संदन कारकर्दगी ज़ीरो आहे। ध्यान हटाइण लाइ रिथांदी वई। असां सिंध जो विरांगो नथा चाहियूं। कंहिंखां सर्टिफिकेट वठण जी ज़रूरत नाहे त असीं सिंध सां केतिरी मोहबत करियूं था।

पीपल्स पार्टी मेंबर्स सिंध जे इम्कानी विरांगे के मुकमिल तौर रद्द करे छो एमपीओ में अपोजिशन जे बेन पार्टीज ते सख्त तनकीद सीनियर सूबाई वजीर शर्जिली नाम मेमर चयो त एमपीओ वारनि जो बिटो मयार आहे ठहराउ खां बचण लाइ वॉकआउट जो बहानो बणाए भॼी विया सिंध जा माण्हू पंहिंजी धरतीअ सां बेतहा मोहबत कनि था मरंदे वेंदासीं पर सिंध ते सौदेबाज़ी न कंदासीं एमपीए फरियाद टालपुर चयो त सिंध जी वहद ते कंहिं बि क़िस्म जी सौदेबाज़ी न थींदी भले इस्तीफ़ा ॾियणी पवे पर सिंध जो विरांगो थियण न ॾिनी थो असांखे भॼी ॿाहिरें मुल्क नाहे वञणो पर हिते ई जीअणो ऐं हिते ई मरणो आहे सूबाई वज़ीर सैद गनी चयो आहे त असां लाइ सिंध जी वहदत खां वधीक का बि शइ नाहे विरांगे जी ॻाल्हि थी त सियासत वज़ारत ऐं मेंबरशिप खे लत हणी छॾींदासीं सिंध जी वहदत लाइ जान बि क़ुर्बान करे छॾींदासीं।

0: वफाकी हुकूमत जो जमात इस्लामी सां ॻाल्हियूं कमेटी बि जोड़ी वई। जमात इस्लामी धरणा ख़तम करण लाइ पेट्रोलियम डेवी जे खाते में सूदो टे शर्त रखी छॾिया। मुलगीर हड़ताल दौरान हुकूमती वक़्त जमात इस्लामी जे हेडक्वार्टर मंसूरा पहुची ॻाल्हियूं कयूं। जमात इस्लामी पारां पेट्रोलियम डेवी जो ख़ात्मो, आईपीएस मुआहिदो ख़तम करणु, बिजली जे अघनि में घटिताई जो मुतालबो। मुलाक़ात खां पोइ गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जमात इस्लामी जे अमीर हाफिज़ महमूद रहमान चयो आहे त धरणनि जो को बि शौक़ नाहे। अवाम खे दरपेश मसलनि जे हल लाइ 19 ॾींहनि खां धरणा हया विया आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल जो चवणु आहे त जमात इस्लामी वटि पेट्रोलियम लेवी घटाइण जी तजवीज़ आहे त खेल ख़ुशी थींदी। राणा सनाउला चयो आहे त हाफिज़ महमूद ॿुधायो त अहिड़ियूं तजवीज़ूं आहिनि जिन सां अवाम खे रिलीफ मिलंदो। हुकूमत अमल जो बि तजवीज़नि ते ज़रूर अमल कंदी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदा

टुटी टुटी जुड़ी त ॾिस मुड़ी त ॾिस हज़ार लख किरोड़ छॾ बणजी कॾहिं ॿुड़ी त ॾिस विरण में आहे छा रखियो जानी अना खे छॾे मुड़ी त ॾिस।

जुमे जो भला रोडी सेप्टेम्बर महीने की चौथी तारीख है 2026 ईस्वी सन रबेल महीने की अज खैर से 21 तारीख है 1448 हिजरी सन। पंजाब जो हमदर्दी करण सा हिकड़ो बियो रूप आहे कुर्ब ऐं प्यार मोहबत जो। असीं जॾहिं कंहिं बि मामले में कंहिं सां हमदर्दी कंदा आहियूं त दिलि खे सुकून मिलंदो आहे। हमदर्दी या पंजाब बाज़ार जे कंहिं बि दुकान तां कंहिं बि क़ीमत ते नाहे मिली सघंदी, पर उहा अनमोल कैफ़त इंसान जे अंदर में मौजूद हूंदी आहे। जंहिं वक़्तु कोई कंहिं सां ओखी वेल में सिर्फ़ ॿ प्यार जा ॿोल ॿोले पंजाब ॾेखारे थो त उहो माण्हू केॾो न उन वक़्तु हमदर्दी करण वारे माण्हूअ खे पंहिंजो प्रिय लॻे थो। तंहिं करे पाण खे सभिनी खे घुर्जे त हमेशा हमदर्दीअ जे सथ में रहिजे ऐं उन खे पंहिंजो महबूब समझे, पंहिंजो समूरो जनम अर्पे छॾिजे। ईअं करण में लुत्फ़ आहे, मज़ो आहे, सुकून आहे।

समझा ज़बान में मिठा वणंदड़ बोल बोलण सोणा संजीदा सुखन कढ़ण नरम ऐं सहायता गाल गालंदड़ खे ई मिठी ज़बान चइबो आहे। जंहिं ज़बान मां मिठा बोल निकरंदा आहिनि तंहिंमें जादूअ खां बि वधीक असरु हूंदो आहे। अहिड़ी ज़बान मुरलीअ जे मंड खां वधीक आहे। मिठड़ी ज़बान सां बिरह वारियूं बातियूं करे इंसाननि जूं दिलियूं फतेह करे सघबियूं आहिनि। उहा ई मिठी ज़बान जड॒हिं ॻाल्हाईंदी आहे तॾहिं ॼण प्यासी दिलनि में ऐं ज़हननि ते मोहबत जा मींहं वसण लॻंदा आहिनि ऐं कुर्ब ककर बणजी सूरनि जी सिज खे लिकाए छॾींदा आहिनि। उन ई ज़बान में अहिड़ी ताक़त आहे जो दुश्मन बि दोस्त बणजी वञनि था। त साईं जा इहे असांजा सिंध जा कलंदर इहे हुया जेके पंहिंजे वक़्त जे हिसाब सां माण्हुनि खे एतिरी मोहबत ॾिनी, एतिरो प्यार ॾिनो ऐं दीन जी तबलीग एतिरी कई जो माण्हू उन अमल सां पंहिंजे जिस्मानी पंहिंजो ज़हनत खे पंहिंजो ख़तमु कयो, पंहिंजे सोच खे तब्दील कयो। इहे ई हुया कलंदर बादशाह जिन पंहिंजे वक़्त जे हिसाब सां ॿियनि ते बि अमल कयो ऐं उन ते बि पाण बि अमल कयो ऐं उन्हनि अमल करण सां ई उहे कलंदर बणिजी विया।

इहा समय कलंदरी धमाल मां ॿुधी रहियो GFM 88 जे नेटवर्क तां तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु 11 वॻे ताईं ऐं हिन वक़्तु हलूं पिया कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं कॾहिं बि न वञिजो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: इट्स 9:30 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
6: Yeah!

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
2: हर माह मुनाफा आमदनी में इजाफा, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले फसल भर।
4: आप सुन रहे हैं
5: DAFM 88

साईं जा अॼु सालगिरह जो ॾींहुं आहे असदुल्ला जूणी जो, उन जी अॼु बर्थडे आहे, सालगिरह आहे, ऐं असां पाण हुन खे हैप्पी बर्थडे चऊं पिया, ऐं असां हुन खे सालगिरह जूं लख लख मुबारकूं ॾियूं पिया। असांजे तरफ़ां दुआ आहे त ही साल असदुल्ला जे लाइ ज़िंदगी में ख़ुशियुनि जो साल हुजनि, ऐं असां दुआ पिया कयूं त गुलाब जे गुल जीअं खिलंदा मुस्किरंदा रहनि, ऐं असदुल्ला जा समूरा ख़्वाब पूरा थियनि, ऐं उन्हनि जे वजूद सां असांजूं रौनकूं आहिनि, ऐं अलाह साईं हमेशा हुनखे आबाद रखे, शाद रखे, ऐं हमेशा असदुल्ला खिलंदो मुस्कराईंदो रहे, आमीन। ऐं बर्थडे जे हवाले सां ख़ूबसूरत नगमो आहे असदुल्ला जे नाम।

समझा सावल मीर अली जो गज़ल अवां जे ना मुर्की नेण मिलाए दिल खणी वियां मुर्की नेण मिलाए दिल खणी वियां ज़ोरीअ कीअं अलाए दिल खणी वियां वेंजी सिंजी सरस करे सिंगार पी वेस गुलाबी पाए दिल खणी वियां माणा टाणा अंगल आरा नाज नियारा वेतर पाण वणाए दिल खणी वियां घोरे नज़रुनि सां निहारी मुर्की मारी वई घूरे नज़रुनि सां निहारी मुर्की मारी शोखीअ सां शर्माए दिल खणी वियां सुरंदे सुरंदे पाण अची भर में वेही कुख में चूंडड़ी पाए दिल खणी वियां तुंहिंजी कयल कचहरी मूंखां नथी विसरे गुणनि ठम त हाए

जी हा समय प्रोग्राम रोशन सुबह बुध पे जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां वक्त न्यूज ब्रेक कमर्शियल ब्रेक की तरफ हलूं पिया वापस इंदासीं कदें भी न वञो वरी अवां सां इंदासीं गॾु थींदासीं अवां खे वरी सवाल भी नोट कराईंदासीं अवां खे चूंड मौसीकी भी जरूर ॿुधाईंदासीं।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News।
5: Brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान।
7: हम नेशन असेंबली सिंध जी वहादत खिलाफ न धरती जे करे वर्कर्स पार्टी एमपीए ने सार कोड़ो सांगे खिलाफ हिकु ऐवान रखराव मंजूर करे वरितो। ठहराव में चयो वियो आहे त मुल्क में नवनि सूबनि इंतज़ामी यूनिटनि जे हवाले सां नए शुरू थी वियो आहे। अहिड़नि तजवीज़नि जो असर सिंध ते पइजी सघे थो। सिंध हिकु तारीख़ी तहज़ीबी ऐं आइनी सुञाणप रखंदड़ खुतो आहे। सिंध जी सुञाणप ऐं इलाक़ाई सिंध सां पाकिस्तान में कई हुई ऐं वरी इम्कानी निसार ऐं मथां ठहराव जे इम्कानी विरांगे खे करे चुकी आहे। आइन में वाज़े आहे त सूबे जूं हदूं तब्दील करण लाइ लाॻापियल असेंबली मां ठहराव मंज़ूर आहे। सिंध मां कंहिं बि ज़िले डिवीज़न जा इलाइक़े खे धार करण या वफ़ाक़ी निज़ाम जे मातहत रखण खे रद्द करे थो। सूबाई असेंबली सिंध जे हदनि में कंहिं बि क़िस्म जी तब्दीली जी इजाज़त नथी ॾे। ऐवान वाज़े लफ़्ज़नि में ऐलान करे थो त सिंध हिकु आहे, हमेशा हिकु ई रहंदी।

एमक्यूएम द्वारा सिंध जो विरांगो नथा चाहिन तैवान मां भॼी छो विया। नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो टीवी प्रोग्रामनि ज़रिए न पर असेंबली में थियणो आहे। ख़बर पइजी वई त कहिड़े विरांगे जे ख़िलाफ़ आहिनि ऐं कंहिंजो बिट किणे बंदूक खणण जी ॻाल्हि कंदड़ लीडर ख़बर नाहे हाणे किथे वेठो आहे। सिंध जे वहदत ते बिटो मयार क़बूल नथो करे सघिजे। ख़बरदार करियूं था त कोन असेंबली बि सिंध जे विरांगे जी ॻाल्हि नथी करे सघे। वरी वज़ीर सैद मुराद अली शाह जो सिंध असेंबलीअ में ख़िताब। वरी वज़ीर चयो त लाहौर में वफ़ाक़ी वज़ीर निज़ाम तबाह थियण जो बिज़नेसमैननि ताड़ियूं वॼायूं। छा हामिस में मसलो कंदा? सो अचे सिंध असेंबलीअ में मौजूद मुबैना पीटीआर वारा हिदायतूं कंहिंखां वठी रहिया आहिनि? पीटीआई वारा साम्हूं अची चवंदा हुआ उहे सिंध जे विरांगे जे ख़िलाफ़ आहिनि।

सिंध असेंबलीअ में सिंध जे इम्कानी विरांगू ख़िलाफ़ ठहराउ पेश थियण खां अॻु अपोज़िशन जवान मां वॉकआउट। अपोज़िशन लीडर अली ख़ुर्शीद ख़िताब कंदे चयो त सिंध असेंबली अॻी पंज भेरा सिंध जो विरांगो रद्द करे चुकी आहे त पोइ रिथ ते बहस ई न थियण खपंदो हो, पर पीपी वटि नाकामी लिकाइणो संदन कारकर्दगी ज़ीरो आहे। ध्यानु हटाइण लाइ रिथ आंदी वई, असां सिंध जो विरांगो नथा चाहियूं, टिकट वठण जी ज़रूरत नाहे त असीं सिंध सां केतिरी मोहबत करियूं था।

पीपल्स पार्टी मेंबर सिंध जे इम्कानी विरांगे के मुकम्मिल तौर रद्द करे छो। एमक्यूएम अपोजिशन जे बिन पार्टीज ते सख्त तनकीद। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिली नाम मेंबर चयो त एमक्यूएम वारनि जो बिटो मयार आहे। ठहराव खां बचण लाइ वॉकआउट जो बहानो बणाए भॼी विया। सिंध जा माण्हू पंहिंजी धरतीअ सां बेतहा मोहबत कनि था। असां मरंदे मरंदे वेंदासीं पर सिंध ते सौदेबाज़ी न। एमपीए फरियाद टालपुर चयो त सिंध जी वहद ते कंहिं बि क़िस्म जी सौदेबाज़ी न थींदी। भले इस्तीफ़ा ॾियणी पवे पर सिंध जो विरांगो थियण न ॾिनो। असांखे भॼी ॿाहिरि मुल्क नाहे वञणो पर हिते ई जीअणो आहे, हिते ई मरणो आहे। सूबाई वज़ीर सैद गनी चयो आहे त असां लाइ सिंध जी वहदत खां वधीक का बि शइ नाहे। विरांगे जी ॻाल्हि थी त सियासत वज़ारत ऐं मेंबरशिप खे लत हणी छॾींदासीं। सिंध जी वहदत लाइ जान बि क़ुर्बान करे छॾींदासीं।

पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में हिकु भेरो वरी वाधि करे छॾी। पेट्रोल ॿ रुपया 84 पैसा ऐं डीज़ल ॿ रुपया 28 पैसा फी लीटर महांगो। पेट्रोल जो नओं अघु 349 रुपया ऐं डीज़ल जो नओं अघु 374 रुपया 28 पैसा फी लीटर मुक़ररु। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीज़ल जा नवां अघु 4 सेप्टेम्बर लाइ हूंदा।

वफाकी हुकूमत जो जमायत इस्लामी से गालू कमेटी भी जोड़ी गई। जमायत इस्लामी धरना खत्म करने लाए पेट्रोलियम डेरी के खात्मे फूड और ड्रेस शर्त रखी छड़ा। गुलगीर हड़ताल दौरान हुकूमती वक्त जमायत इस्लामी के हेडक्वार्टर मंसूरा पहुंची गालू क्यों। जमायत इस्लामी पारा पेट्रोलियम डेरी के खात्मो आईपी मुआहदो खत्म करण बिजली के अघन में घटाई के मुतालबो। मुलाकात का गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमायत इस्लामी के अमीर हाफिज महमूद रहमान है धरण जो को भी शौक ना है। अवाम के दरपेश मसलन के हल लाए 19 दिन का धरना हया वया है। वफाकी वजीर अहसन इकबाल चवण है जमायत इस्लामी वट पेट्रोलियम लेवी घटाने की तजवीज है तेन खुशी थी। राणा सनाउला हाफिज महमूद बुधा तो अड़ी तजवीजू हैं जिनसा अवाम के रिलीफ मिलन। हुकूमत अमल जो इन तजवीजन से जरूर अमल कर। कौमी असेंबली के घरू मामलों बाबत स्टैंडिंग कमेटी जो इजलास इस्लामाबाद लाए मकानी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

जी असीं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह जारी सारी आहे तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीक यारहें वॻे ताईं हिन वक़्तु हलूं पिया कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं असां सां गॾिजो

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: It's 10:30 AM. This time brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरर।
0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ जीएफएम 88 नेटवर्क ते।
3: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। जीएफएम की आवाज,
3: जीएफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: उन सा लागापियल गैर सरकारी तंजीमन जी हौसल खसी सन 2013 में इन डी जे मलण जी शुरुआत। घणा पंहिंजो खैराती इदारा आहिनि के कासाइन था, काफ़ी सरकारी माण्हू बि आहिनि जेके खैराती हॉस्पिटलूं आहिनि, काफ़ी चङा जो कमु आहे ख़ैर ते ऐं अलाह साईं उन जो कमु आहे। हिकिड़ो पिया कयूं

याने चैरिटी कम जेके भी उन जो आलमी डी 5 सितंबर ते मल्हाए वेंदो। असांखे प्रोग्राम में सवालनि जा सही जवाब ॾिना, उन जा नाला बि अवां ताईं पहुचाईंदा हलंदासीं। हिमत अली चांडियो, ज़ुबेर अली सुल्तान चांडियो, ॻोठु लश्करी चांडियो लॻे मही मकोलनि खां, आसिफ अली कोरकाणी ॻोठु जबल खान कोरकाणी खां, असद अलाह जुणे जो, हाफिज़ तौकीर रहमान जुणे जो, बेबी अजवा फातिमा ऐं बेबी अबिया फातिमा ॻोठु ठुल जुणे जो खां, नज़ीर अहमद खोसो सोबतपुर बलोचिस्तान खां, यासमीन मलिक मीरपुर ख़ासि खां, रोस्तम अली पंवर ॻोठु पुनू ख़ान पंवर सेवण खां, अज़ीज़ सोलंगी भुट्टो सोलंगी नूरो सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां, इक़बाल लाशारी इक़बाल अहमद खूहारो लाड़काणे खां, ऐं ममन शरीफ़ छुटो दरेजी बलोचिस्तान खां, ऐं ख़ालिक लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ासि खां, अलह बचायो नुहाणी शाहपुर दरपुर खां, दिलीप कुमार मेंगवाड़ पाबो वेरो खां, ऐं महरम अली जतोई ॻोठु आगा खान जतोई खां, कुर्बान अली ख़ासखेली झंडो मरी खां, हाफिज़ मोहम्मद अमीन बारी जो गंबट लग खोड़ा खां, अल्ताफ गाढ़ी बलोच कराची खां, मोहम्मद खान कुंभार जमाल कुंभार मोहम्मद अली कुंभार हाले पुटरा स्टाप मीरपुर ख़ासि खां, रेहाना खान भखर खां, नादर अली कंगो ॻोठु कंगन खां, गुलाम मुर्तज़ा लुंड मीरपुर ख़ासि खां, हाफिज़ नईमुल्लाह काज़ी अमीनुल्लाह काज़ी पनिया किल खां, दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। ऐं जिन दोस्तनि असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया उन्हनि जा लख कुर्ब। ॻोठु मोलिन माशी लॻे वॾनि मरनि खां, ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तार अली सोलंगी, ज़हीरबा सोलंगी, नंढड़ो वफ़ा हुसैन सोलंगी, ॻोठु कंगन खां गुलाब खान कुंभर, शोएब अली गुलाम रसूल कुंभर, ॻोठु अहमद खान लाशारी लॻे धूणनि खां, नियाज़ अली लाशारी, नंढड़ो शाहज़ेब लाशारी, ॻोठु हसू जतोनि खां, मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद ऐं नसर अला जतोई, ॻोठु मोहम्मद कासिम चांडियो खां, अली अकबर चांडियो, मोहसिन अकबर चांडियो, अहसन अकबर, फहद अकबर, अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो, ॻोठु छुटो मक्सी लॻे कंगन खां, सिकंदर अली मक्सी, सखर लॻ सब्ज़ी मंडी खां, एजाज़ अली जुणे जो, मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जुणे जो, यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां, फौजी इरशाद अली मयसर, फ़क़ीर एजाज़ अली कलोड़ो, डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो, माजिद अली जतोई। समिन दोस्तनि जी वॾी महिरबानी, ऐं ही नगमो सभिनी दोस्तनि जे नाम।

0: Noșorul.
1: Noșorul.
2: Ami Budhopia, GA Hyderabad Matiari, FM Narex.
3: O pita jai, pita deva sei, noor mujo to.
4: Sanjak is brought to
5: you. Ini NL Jaise Cream, dard khati kari maame.
6: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
7: ब्रॉट टू यू बाय
8: सोना यूरिया ग्रेनुलर
9: सिंध एक आए हमेशा एक करांदे

एम के हा चाहिन तहवान मां भजी छो वया। नवनि सूबनि जो फैसलो टीवी प्रोग्रामनि ज़रिए न पर असेंबली में थियणो आहे। ख़बर पए माण्हू जे कंहिंजो बिठो मयार आहे। टी ॻाल्हि कंदड़ लीडर ख़बर न सिंध जी वहदत ते बिठो मयार क़बूल न था त सिंध जे विरांगे जी ॻाल्हि नथी करे सघे। वरे वज़ीर चयो आहे त लाहौर में वफ़ाक़ी वज़ीर निज़ाम तबाह थियण जो चयो त बिज़नेसमैननि ताड़ियूं वॼायूं। छा हाणे अरबपति बिज़नेसमैन नवनि सूबनि जो फैसलो समुझ में न पियो? मुबैना पीउ खां वठी रहिया साम्हूं ख़िलाफ़ आहिनि। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प एडमिटेरी खे फ़ौज लाह वज़ीर नामज़द करे छॾियो। एडमिटेरी नायक जे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई हुई। एडमिटेरी आम सिविल मामलनि जो ज़िमेवार थींदो। गाजी खावड़ वेझो मीरबाज जे आबादगारनि जो पाणीअ कोर्ट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। आबादगारनि पारां पोछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। मुज़ाहिरनि चयो आहे त मीरबा में पाणीअ जी सख़्त खोट आहे। पोछड़ में फसल सुकी रहिया आहिनि। आपाशी खातो पाणी विकिरो करे रहियो आहे। पोछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे। उबावड़ो भरिसां रेणी केनाल मां औरत जो हथ पेर ॿधल लाश हथायो आहे। सुञाणप न थी। पुलिस जो चवण आहे त औरत जे जिस्म ते तशद्दुद जा बि निशान आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। अहमदपुर वेझो चांडिया बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो लठियूं ऐं ॾाटा लॻण सबबि ॿिन्ही धुरियुनि जे चइनि औरतनि समेत 12 ॼणा ज़ख़्मी।

जलन की हालत गंती जोगी। गोठ फतेह अली चांडियो में चांडिया बिरादरी के बिन धुरी में घिटी के मामले तां झेड़ो थियो, जेड़े दौरान बिन्हीं धुरी के चयन औरतन समेत 12 जणा जख्मी थे अस्पताल मुंतकिल। मलीर सिटी के इलाके गाजी बरोही गोठ के मलीर मॉडल सेकेंडरी स्कूल की इमारत में कब्जो बरकरार। सवरी रोड ते असेंबली लगा उस्तादन शागिर्दन पारा स्कूल तां कब्जो खत्म कराने जो मुतालबो।

0: आप सुन रहे थे
1: मटिया आवाज भी मटियारी की है।
2: गीत संत जो आवाज

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं. इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा. 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा.
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
0: GFM 91.6।

0: अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: Express PM, this to you by
3: Fakiri, neem prickly heat soap,
4: jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri, neem prickly heat soap,
4: har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GFM network par KTN News,
6: brought to you by
7: Sona Yulia Granular, mitti jo maan wat.
8: मुश्किल फैसलनि सबबि मुआशी इस्तकाम आयो आहे। टैक्स जो हदफ़ बीपी जे 11% ताईं पहुचाइणो आहे। इस्लामाबाद में तकरीर खे ख़िताब कंदे नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त निस्कारी वारे अमल खे शफ़ाफ़ बणायो वियो आहे। मुआशी सुधारनि जो अमल बि तेज़ी सां जारी आहे। ख़िलाफ़ जंग जो फ़ैसिलो दुरुस्त आहे। जंग में अमेरिका पंहिंजी बरतरी बि साबित करे छॾी आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अमेरिका वटि हथियारनि जो वॾो ज़खीरो मौजूद आहे। यूक्रेन जंग ख़तम थियण जो ख़्वाहिशमंद आहियां। ही आहे इंसाननि ख़िलाफ़ बहितर रोकण जो को बि न रस्तो। इसराइली वज़ीर आज़म ईरान ते ॿीहर हमला करण जी धमकी ॾेई छॾी। फ़ौजियुनि खे ख़िताब कंदे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चयो आहे त ईरानी हुकूमत बका जी आहे जल्द किराइण में नाकामयाब थींदा आहे। तमामी हुकूमत ख़त्म करे छॾींदासीं। असांजी फिज़ाया ईरान ते ॿीहर हमलनि लाइ तयारु आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जीलीना मेमण जी सारत हेठि ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास। पीपल्स बस सर्विस, डबल डेकर बस, एवी टैक्सी ऐं पिंक स्कूटीज़ मनसूबनि ते गौर। ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त कंबर शादात कोट ऐं लाड़काणो रूट ते बस सर्विस जल्द शुरू कई वेंदी। शर्जील मेमण चयो त नवनि रूट्स ते बस सर्विस लाइ समूरा इंतज़ाम मुकमिल कया वञनि। पीपल्स बस सर्विस जो दायरो वधाइण जो मक़सदु आवाम खे बहितर ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत फराहम करण आहे। गाजी खावड़ वेझो मीरवा जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। आबादगारनि पारां पोछण ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। फसल सुकी रहिया आहिनि। आपाशी खातो पाणी पहुचायो वञे। उबावड़ो भरसां रेणी केनाल मां औरत जो हथ। पुलिस जो चवण आहे त औरत जे जिस्म ते तशद्दुद जा बि निशान आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। अहमदपुर वेझो चांडिया बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो लठियूं ऐं डाटा लॻण सबब में 12 ॼणा ज़ख़्मी। ॿिनि ॼणनि जी हालत घंटी जो में चांडिया मामले तां झेड़ो दौरान धुरियुनि जे चइनि औरतनि समेत 12 ॼणा ज़ख़्मी थिया। इस्पताल मुंतकिल। गाज़ी ॻोठ जे मलीर मॉडल सेकेंडरी स्कूल एहतजाजनि रोड ते असेंबली करे रोड ते ही पढ़ण लॻा। उस्तादनि ऐं शागिर्दनि पारां स्कूल तां कब्ज़ो ख़तम कराइण जो मुतालबो।

0: वरे वहामी वया संदस गायल गीतन जो अज भी हजारे दिलन ते राज बरकरार।
1: आप सुन रहे थे जी के टी एन
2: बी मटियारी की है, सुनते रहो जी एफ एम 91.6।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, एफ एम 91.6।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
3: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: It's 1 PM. They got to you by
0: excitement,
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिल एतमाद मयार।
0: हर अच्छा नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
6: ब्रॉट टू यू बाय
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान।
8: डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अमेरिका वटि हथियारनि जो वॾो ज़खीरो मौजूद आहे। यूक्रेन जंग ख़तम थियण जो ख़्वाहिशमंद आहियां। ई आहे इंसाननि ख़िलाफ़ त रोकण जो को न को रस्तो मौजूद हूंदो। इसराइली ते ॿीहर हमला करण जी धमकी ॾेई चई ख़िताब कंदे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चयो आहे त ईरानी हुकूमत बका जी जंग विढ़ी रही आहे। जल्द केराइण में कामयाब थींदासीं। पक आहे त इस्लामी हुकूमत ख़तम करे छॾींदासीं। असांजी फिज़ाया ईरान ते ॿीहर हमलनि लाइ तयार आहे। डिकर बस, ईवी टैक्सी ऐं पिंक स्कूटीज मनसूबनि ते गौर धायो वियो त कंबर शादात कोट ऐं लारका बस सर्विस जल्द शुरू कई वेंदी। शर्जील मेमण चयो त नवनि रूट्स ते बस सर्विस लाइ समूरा इंतज़ाम मुकमिल कया वञनि। पीपल्स बस सर्विस जो दायरो वधाइण जो मक़सदु अवाम खे बहितर ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत फराहम करणु आहे।

0: तेल निकरंदो। अटकल 1 MMSCF कुदरती गैस जे बि मिलण जो इम्कान आहे। दरियाफ़त थियल तेल ऐं गैस जे मक़ामी पैदावार खे हथी मिलंदी।
1: आपके बच्चों का हेल्थी फ्यूचर जुड़ा है हेल्थी हाइट।
0: सिंध जे मुख्यमंत्री जा लाश हथायो आहे। सुञाणप न थी सघी। रोड़ी वेझो कौमी शाहरा तां बि नौजवान जो लाश मिलियो। सुञाणप न थी सघी। नगर पार्कर वेझो 15 वरनि जी नींगरीअ जो वण में टंगियल लाश हथायो आहे। अस्पताल मुंतकिल। गोठ कोया वासण लक्ष्मी धीअ हरी सिंह कोहलीअ जो घर भरसां बनीअ मां लाश मिलियो आहे। वारसन जो चवण आहे त नींगरी कानोड़ीअ जे ॾिण लाइ कपड़ा न वठी ॾियण ते आपघात कयो। कराची दारी अदालती कमीशन तो हेड मर्डर खे बि नोटिस जारी। कमीशन पारां ॿिन्ही आफ़िसरनि खे 7 सेप्टेम्बर ते पेश थियण जी हिदायत। मीर रज़ा जो लाश गुलिस्तान जोहर थाणे जी हद मां मिलियो। कराची जे सिंध इन्फेक्शन अस्पताल 3 मरीजनि में एमपॉक्स जी तस्दीक करे छॾी। हिकु शकी केस रिपोर्ट। अस्पताल ज़रियनि मूजिबि एमपॉक्स जा वधीक 3 केस ज़ाहिर थिया आहिनि। 3 मरीजनि जी PCR टेस्ट में एमपॉक्स जी तस्दीक थी आहे। सिंध में एमपॉक्स जी तस्दीक थियल केसनि जो अंगु 40 थी वियो। गाजी खावड़ वेझो मीरवा जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। आबादगारनि पारां पोछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। मुज़ाहिरनि चयो त मीरवा में पाणीअ जी सख़्त खोट आहे। पोछड़ में फसल सुकी रहिया आहिनि। आपाशी खातो पाणी विकिरो करे रहियो आहे। पोछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुलंद रहो।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुरियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: टू यू बाय
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द सूजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय।
4: सिर्फ कारण के सहूलतूं ॾेई रहिया आहियूं के जटादार इस्तेकाम तरफ आहे। बुनियादी सुधारनि वारो सिलसिलो बि जारी रखियो वेंदो। निजी शोबे खे मुल्क जे मुआशी क़यादत करण जे क़ाबिल बणायो। ईरान जंग ख़िलाफ़ जो फ़ैसिलो दुरुस्त आहे। जंग

0: FM के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: तो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो।
3: Coke Studio Season 9

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GFM की आवाज,
2: GFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

शोबे के मुल्क जी सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण की ज़ियारत है। ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास पीपल्स बस सर्विस डबल डेकर बस ईवी टैक्सी ए पिंक स्कूटीज मनसूबन से गौर ब्रीफिंग में बुधायो वो तो कंबर शादादकोट ए लाड़काणो रूट से पीपल्स बस सर्विस जल्द शुरू कई वेंदी। शर्जील इनाम मेमण नव रूट्स से बस सर्विस ला समूरा इंतजाम मुकमिल कया वन। पीपल्स बस सर्विस जो दायरो वधाण जो मकसद आवाम के बेहतर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करना है। जयकुम आबाद में केपीके के वे वजीर सोहेल आफरीदी की अगवाणी में पीटीआई की रैली। सोहेल आफरीदी की अगवाणी में निकतल रैली शहर जो गश्त कयो। सोहेल आफरीदी तो मुल्क में आवाम की हुकुमरानी लाए जिदोजहद कर रहा हूं, तरके लाए आवाम की गाल मंझनी पवंदी। सिंध के मुख्तलिफ इलाक में नींगरी औरत समेत टिन जणन जा लाश हथ उबावड़ो भरसाणी केनाल में औरत जो हथ पेर बदल लाश मिलो सुणप न थी सगी। रोड़ी वेझो कौमी शाहरा ता में नौजवान जो लाश मिलो सुणप न थी सगी। नगर पार्कर वेझो 15 वरन जी नींगरी जो वण में टंगल लाश मिलो अस्पताल मुंतकिल गोट कोया वासण लक्ष्मी दिहारी सिंह कोहली जो घर भरसा बनी में लाश मिलो। वारसन जो चवण है नींगरी गानोड़ी के ऋण लाए कपड़ा न वी डेण से आपघात कयो आहे। कराची के व्यापारी मीर रजा केस की अदालती जांच जारी। अदालती कमीशन एसएचओ गुलिस्तान जोहर कामरान कुरेशी के तलब करे वरतो। हेड वारन के भी नोटिस जारी। कमीशन पारा बिन्हीं ऑफिसर के 7 सेप्टेम्बर से पेश थियण की हिदायत। मीर रजा जो लाश गुलिस्तान जोहर थाने की हद में मिले हो। गाजी खावड़ वेझो मीरवाजे आबादगारन जो पानी कोर्ट खिलाफ मुजाहरो। आबादगारन पारा पोछड़ ताई पानी पहुंचाने जो मुतालबो। मुजाहरीन चवाए तो मीरवा में पानी की सख्त खोट है। पोछड़ में फसल सुकी रहा है। आपाशी खातो पानी विक्रो कर रो है। पोछड़ ताई पानी पहुंचाया वे। हैदराबाद में हाईवेज डिपार्टमेंट के मुलाजमन जो मुतालबन की मंताला एहतजाज। मुलाजमन पारा जायज मुतालबा तस्लीम करण जो मुतालबो। अगवाणन चयो तो हाजिर सर्विस पोत थियल रिटायर्ड मुलाजमन की औलाद के ग्रेड 1-4 25% कोटा तहत फौरी नौकरियों डिनी वन।

मलीर सिटी के इलाके गाजी बिरोई गोठ के मलीर मॉडल सेकेंडरी स्कूल की इमारत से कब्जो बरकरार समय शागिर्दन ए शागिर्दानी एहतजाजन रोड से असेंबली करे रोड से ही पढ़ लगा उस्तादन ए शागिर्दन पारा स्कूल तां कब्जो खत्म कराने जो मुतालबो। घोटकी पुलिस मुबैना तौर टिन नौजवान के खंभे गुम कर छो वारसन जो एहतजाज टिन्हीं नौजवान के आजाद करण जो मुतालबो गोठ अबुल मीर बहर के रहवासिन पुलिस के जल्दियों खिलाफ एहतजाज किया अगवाणन चो तो घोटकी पुलिस हफ्तों

दौलतपुर सफन में चइनि ॿारनि जी माउ जे क़तल ख़िलाफ़ संदसि वारसनि जो दादू में एहतजाज। महीनो अॻु क़तल थियल नुसरत मल्हा जे वारसनि एहतजाज जो मुज़ाहिरो करे कचहरी रोड ते धरणो हयो। औरत जे वालिद मंज़ूर मल्हा जो चवण आहे त धीअ जे दौलतपुर सफन वासी शमन मल्हा सां शादी कराई हुई। खेसि चार ॿारनि जो औलाद आहे। हू धीअ खे मुड़ुस ऐं साउरनि गोलियूं हणी क़तल कयो आहे। मुख़ालिफ़नि ते इल्ज़ाम आयो आहे नुसरत जे मुड़ुस

0: ॿियनि खे गिरफ़्तार करे संदन ख़िलाफ़ क़तल केस दाख़िल कयो वञे। सखर में मोटरसाइकिल चोराए फरार थींदड़ हिकु जवाबदार खे शहरीन पकड़े वरितो। ॿियो फरार थी वियो। नादरा ऑफिस ॿाहिरां मोटरसाइकिल चोरी करे फरार थींदड़ जवाबदारनि खे शहरीन पकड़े वरितो। हिकु फोरू मोटरसाइकिल समेत पकड़िजी पियो। ॿियो फरार थी वञण में कामयाब थियो। शहरीन पकड़ियल फोरू पुलिस हवाले करे छॾियो। फुलजी स्टेशन भरिसां 8 ॼणनि जे क़तल केस में 14 ॼणनि जी गिरफ़्तारी। ज़ाहिर हथियार बि हथ कया विया। चांडिया बिरादरी जे ॿिनि धुरिन में झेड़े दौरान क़तल थियल 8 ॼणनि जे केस में पुलिस जूं कार पुलिस गुझी इतलाउ ते छापो हणी क़तल में मुलविज़ जवाबदार गिरफ़्तार कया। गिरफ़्तार जवाबदारनि में मोहम्मद यासीन सिंगार, तौफ़ीक शेर खान, राशिद चांडो ऐं ॿिया शामिल। गिरफ़्तार जवाबदारनि वटां 3 कलाशन कोफ, 3 G3 बंदूकूं ऐं वॾे अंग में गोलियूं हथ कयूं वयूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिसमें इजाफा और किसान को इन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: कोशिश सदर आसिफ अली जरदारी सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह फरहल टालपुर नासिर शाह के लंदन सदाए वरतो इजलास में अठावी आईनी तरमीम बाबत अहम फैसलों के इम्कान खिते के सालसा अमेरिका

खिते जे सालसनामे खां ईरान में ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ नए फ्रेमवर्क ते कम शुरू करे छॾियो। बरतानवी मैगज़ीन फाइनेंशियल टाइम्स पंहिंजे रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ओमान ऐं कतर तेहरान में वाशिंगटन विच में ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ नए फ्रेमवर्क ते कम करे रहिया आहियूं। अमेरिकी नायब सदर अमेरिका में तेल जे अघनि में वाधि जो ज़िमेवार ईरान खे करार ॾेई छॾियो। ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ अबन हार्मुज़ खोलण जो बि शर्त रखी छॾियो। व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे जेडी वेंस चयो आहे त अमेरिका अबन हार्मुज़ में तेल बरदार जहाज़नि ते ईरानी हमलनि सबबि अमेरिका में तेल महांगो थी रहियो आहे। कुझु जहाज़ ईरानी हमलनि सबबि अबन हार्मुज़ मां गुज़रण नथा चाहिनि। जेके गुज़री रहिया आहिनि उन्हनि खे अमेरिका सिक्योरिटी फराहम करे रहियो आहे।

अरब मुल्क ईरान के खुदमुख्तियारी जो एतराम न कदड़ मुल्क जवाब डेण लाइ केस तक इंतजार करण घुर्जे। ईरानी परे वजीर अब्बास इराकी जो उर्दनी हमेश शायद इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कंदे नाणे वारे वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब है तो मुल्क में सीड़पकारी वधाने लाइ सीड़पकारन के सहूलतूं डेई रहा आहियूं। मुआशी तरक्की के जटादार इस्तेमाल तरफ वठी वञणो आहे। बुनियादी सुधारण वारो सिलसिलो भी जारी रखियो वेंदो। निजी शोबे के मुल्क की मुआशी क़यादत करण जे काबिल बणायो वेंदो। बलूचिस्तान के जिले कलात में गुजी इतला सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन 12 दहशतगर्द मार आईएसपीआर मौजूद ऑपरेशन भारतीय सरपरस्ती में कम कदड़ दहशतगर्दन के खात्मे ऑपरेशन दौरान भारतीय सरपरस्ती में कम कदड़ 12 दहशतगर्दन के जन्म भेड़ो हथियार ए बारूदी मवाद हथ किया। जिले कच्चे ए भाग नाड़े में भी दहशतगर्दी जो हमलो नाकाम। पुलिस की कार्रवाई में केतर ही दहशतगर्दन के मारजन का इतला इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण की सदारत है ट्रांसपोर्ट खाते के इजलास। पीपल्स बस सर्विस डबल डेकर बस ईवी टैक्सी ए पिंक स्कूटीज मनसूबन से गौर। ब्रीफिंग में बुधा वो तो कंबर शादादकोट ए लाड़कानो रूट से पीपल्स बस सर्विस जल्द शुरू कई वी। शर्जील इनाम मेमण तो नव रूट से बस सर्विस लाय समूरा इंतजाम मुकमिल कया वन। पीपल्स बस सर्विस जो दायरो वधायण जो मकसद आवाम के बेहतर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करण है। पीटीआई के सिंध में स्ट्रीट मॉम जारी। केपीके के वे वजीर सुहेल आफरीदी की क्यादत में पीटीआई की रैली जख्माबाद का थन्दे शिकारपुर पहुंची वही। रैली में पीटीआई कारकुनन जो वो अंग शरीक। सुहेल आफरीदी तो मुल्क में आवाम की हुकुमरानी लाय जिदोजहद कर रहा आयु तरके लाय आवाम की गाल मंझड़ी पवंदी।

सिंध बैराजेज इम्प्रूवमेंट मंसूबे में अरबे रूपये की बेज़ाबतियुनि जो इंशाफ़। बैराजेज मंसूबे की नाक़िस रिथाबंदी ऐं देर ते वर्ल्ड बैंक जा संगीन एतराज़। मंसूबे में देर सबब क़ौमी ख़ज़ाने ते 10,47 अरब रूपयनि जो वाधू बार पियो। बैराजेज जे बहालीअ वारे मनसूबे में वाधू ख़र्चनि वारो बार अवामी ख़ज़ाने ते मुंतक़िल थियण जो इंशाफ़। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां नींगरी ऐं औरत समेत टिनि ॼणनि जा लाश हथ। बावड़ो भरसाणी केनाल मां औरत जो हथ पेर ॿधल लाश मिलियो आहे। सुञाणप न थी सघी। रोड़ी वेझो क़ौमी शाहरा तां बि नौजवान

लाश मिलियो आहे, सुञाणप न थी सघी आहे। नगर पार्कर वेझो 15 वरनि जी नींगरीअ जो वण में टंगियल लाश मिलियो आहे, इस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। गोठ कोया वासण लक्ष्मी जी हरी सिंह कोहली जो घर भरिसां बनीअ मां लाश मिलियो आहे। वारसनि जो चवण आहे त नींगरी कानोड़ी जे ॾिण लाइ कपिड़ा न वठी ॾियण ते आपघात कयो आहे।

कराची के व्यापारी मीर रजा केस की अदालती जांच अदालती कमीशन एसएचओ गुलिस्तान जोहर कामरान कुरेशी के तलब करे वरतो हेड मरर के भी नोटिस जारी कर छोड़ो कमीशन पारा बिनी आफिस अमर से पेश थे हिदायत।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: सच जो आवाज गीत संगीत बाग मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई
3: फरियाल टालपुर ऐं नासिर शाह खे लंडन सॾाए वरितो। इजलास में ठाही आईनी तरमीम बाबति अहम फ़ैसलनि जो इम्कानु।

अरब मुल्क ईरान की खुद मुख्तारी को एतराम न कर मुल्क के जवाब देने लाए केस तक इंतजार करण घुर्जे। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकी जो उर्दनी हम मनसब के बयान से जवाब अब्बास इराकी ईरान से हमलन लाए अरब मुल्क की जमीन ए फिजा इस्तेमाल कई है शायद अर्दनी परदेही वजीर के खबर न है। मुश्किल फैसले सबब माशी इस्तेकाम आयो पाकिस्तान के बीहर उरूज ए जवाल वे माशी चक्कर में वन डींदी। इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कन्दे नाणे वे पाकि वजीर मोहम्मद औरंगजेब है त मुल्क में सीड़पकारी वाय सीड़पकार सहूलतू डेई रहा हूं माशी तरक्की के जटादार इस्तेकाम तरफ वी वनो है। बुनियादी सुधारण वो सिलसिलो भी जारी रखो वो निजी शोबे के मुल्क की माशी क्यादत करण के काबिल बनाया वो। बलोचिस्तान के जिले कलात में गुजे तलाते सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन बारह दहशतगर्द मार आईएसपीआर मूजिब ऑपरेशन भारतीय सरपरस्ती में कम कदर दहशतगर्द के खात्मे लाय वो। ऑपरेशन दौरान भारतीय सरपरस्ती में कम कदर बारह दहशतगर्द के जन्म भेड़ो किया हथियार ए बारूदी मवाद हथ किया वो। जिले कच्छे भाग नाड़े में भी दहशतगर्दी जो हमलो नाकाम पुलिस की कार्रवाई में केतन ही दहशतगर्द के मारजन का इतला इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिंध के सीनियर वजीर शजील नाम अहमद की सदारत हेठ ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास पीपल्स बस सर्विस डबल डेकर बसेज ईवी टैक्सी ए पिंक स्कूटीज मनसूबन ते गौर। ब्रीफिंग में बुधाया वो कंबर सिदाबकोट ए लाड़काणो रूट से पीपल्स बस सर्विस जल्द शुरू कई वेंदी। शजील मेमन नवन रूट्स से बस सर्विस लाए समूरा इंतजाम मुकम्मल कया वन। पीपल्स बस सर्विस जो दायरो वधायण जो मकसद अवाम के बेहतर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करना है।

सिंध बैराजस इम्प्रूवमेंट मनसूबे में अरबे रूपये की बेजाबतियों जो इंकशाफ। बैराजस मनसूबे की नाकिस रेताबंदी ए देर से वर्ल्ड बैंक जहा संगीन एतराज। मनसूबे में देर सबब कौमी खजाने से 10 अरब 47 करोड़ रूपये जो वाधू बार पो। बैराजन की बहाली वे मनसूबे में वाधू खर्चन वो बार अवामी खजाने से मुंतकिल थे भी इंकशाफ।

कराची जी अदालत पीओ ऐं धी खे गाॾी जी टकर में मारींदड़ औरत निताशा खे मनशियात केस मां बरी करे छॾियो। जवाबदार जे वकील अदालत खे ॿुधायो त केमिकल एग्ज़ामिनर ऐं ब्लड टेस्ट में निताशा जी रत मां आई जी मौजूदगी साबित नाहे थी। पुलिस पारां निताशा जी वरितल नमूननि सां टैम्परिंग कई वई। जांच आफिसर ब्लड टेस्ट जी रिपोर्ट लिकाई हुई। पुलिस मूजिब निताशा मर्कज़ी केस मां अॻे ई बरी थी चुकी आहे। 2024 में पेश आयो हो।

ગોઠી પોલીસ મુંબઈના તોર ચેન નોજવાન કે ખંભે ગુમ કરે છડ્યો પારિસન જો એતજાજ ચેની નોજવાન કે આઝાદ કરણ જો મુતાલબો ગોઠ અબલ મીર બહર જે રવાસીન પોલીસ જી જાતિન ખિલાફ એતજાજ થયો અખબારન ચયો ત ગોઠ કી પોલીસ હફતો પહેરી ટિન નોજવાન તનવીર અહેમદ તોફીક નોમાન મીરાણી કે ખંભે ગુમ કરે છડ્યો આહે નોજવાન કે આઝાદ થયો વને दौलतपुर सफन में चैन बारन की माँ के कत्ल खिलाफ संदस वारिसन जो दादू में एहतजाज महीनों कत्ल थे उसत मल्ला के वारिसन एहतजाजी मुजाहरों कर कचहरी रोड से धरणो हो औरत के वालिद मंजूर मल्ला जो चवण आ धी की दौलतपुर सफन वासी चमन मल्ला से शादी कराई हुई खेस चार बार औलाद हो धी के मुड़स ए सावरन गोलू हणी कत्ल कर मुखालफन के इल्जाम आयो है नुसरत के मुड़स ए बेन के गिरफ्तार कर संदन खिलाफ कत्ल केस दाखिल कर वे पुलगी स्टेशन भरसा अठ जणन के कत्ल केस में 14 जणन की गिरफ्तारी जाहिर हथियार भी हथ चांडिया बिरादरी की बिन धुरियन में जेड़े दौरान कत्ल थियल अठ जणन के केस में पुलिस जू कार्रवाईयों पुलिस गुजे इतला ते छापो हणी कत्ल में मुलविस जवाबदार गिरफ्तार कया गिरफ्तार जवाबदारन में मोहम्मद यासीन सिंगार तौफीक शेर खान राश चांडियो ए बया शामिल गिरफ्तार जवाबदारन वटा टे कलाशनकोफ टे जी थ्री बंदूकू ए वे अघ में गोलियों हथ कयू वयू मकसूद उद्दीन के गाजरा वाह में पानीकोट खिलाफ आबादगार एहतजाज शाहपुर चाकर रोड से धरणो बाबू छन शाख के आबादगार पानीकोट खिलाफ शाहपुर चाकर रोड से एहतजाजी मुजाहरो कर धरणो हयो आबादगार चवण है मुंड में वाटर कोर्स कढ़ सबब कुछ डी ताई पानी नथो पहुंचे फसल तबाह थी वया पानी फराम कर वे

0: कंगना वेलकम बैक वे सोने दे कंगना सौदा इको जया दिल देना ते दिल मंगना सौदा इको जया क्या बात है जना बहुत प्यारा सा और बहुत एनर्जेटिक सा गाना हमने आपके लिए प्ले कर दिया एंड आई एम श्योर कि आप लोगों की जो है एनर्जी लेवल बहुत हाई हो चुका होगा और हम यही चाहते हैं कि आप जहां भी रहें आपका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई रहे। खैर जनाब लेते हैं शो की एक और कॉल यानी कि पहली कॉल देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। आप हमारा नंबर नोट डाउन कीजिए 03000113488 और कॉलर को कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब हमारे कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी क्या हाल है दादा ठीक ठाक मजे में तमाम बुधायो। हेलो हेलो अच्छे थी आवाज।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जलूरी खाम अकेले के। हेलो हेलो आवाज अच्छे थी दादा।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम दादा।
1: हेलो
0: अब बड़े मरिया से हाँ कितरो दफा चकमा।
1: हेलो इशराक भाई।
0: जी जी मुझे प्यारा जलूरी का भाग कुर्बान खास।
1: हेलो
0: अच्छा आवाज कौन थी अच्छे हाँ अच्छे थी।
1: हेलो
0: जिस बात हुआ तो मैं रोड़ा अदा ॾिसो अचे थी हाणे
1: आवाज़
0: तव्हां था वञो। हैलो हैलो ठिप कोन थो अचे आवाज़ भाऊ हाणे छा कयूं। अच्छा बाबा ॾिसूं था हाणे ठिप त अचणु खपे। अब मैं क्या कर सकता हूँ कहाँ जाऊँ किसको खाऊं ये बताएं वहां से थोड़ी सी देखें तारे मारे हिलाएं थोड़ी सी क्या पता है इस तरह हो जाए। एनीवे आपका अपना इशफाक रियाजी आ चुका है आपके साथ आपका अपना शो है जनाब और ये टेक्निकल फॉल्ट जो होते हैं अमूमन मेरे हिस्से में क्यों आ जाते हैं तो जनाब देखते हैं अब एक और कॉल लेकर के क्या है

0: जी त कै जे नाले था कण चाहो
1: बिल्कुल दोस्तन जे नाले कंदा सी ए कोशिश कजो त मुजी पसंद जो सॉन्ग हलाई जो जे कने हलाई तो ता जी मेहरबानी थी जे ना हलाई तो तब काई गाल नहीं
0: केड़ो
1: जेके उदारा मुसोला पकिया
0: ओके ओके ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर
1: ए सलाम सिस्टर मिसेस अली ए सिस्टर फौजिया फरजाना सिस्टर दुआ खान रायत कुमरो मंताज कुमरो हुसैन बख्श करो हाफिज गुलाम अहमद सांबल नजीर मंगिरो बचन चमानी बाकी जेके दोस्त बदन था सभी के इरफान अली से बोपारा फोरा फरा
0: वालेकुम अस्सलाम थैंक यू इरफान
1: खान तां जी जान छडी आ जो मिठाई दिराइयो
0: थैंक यू जीते रहो थैंक यू सो मच हम प्ले करते हैं मुमताज आशारी का प्यारा सा गाना सुनिए और हमारे साथ रहिए

0: 5:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम. मोरू,
2: नौशहरों,
1: मीरपुर खास,
2: लाड़काना,
1: सखर
2: गूंज रही है हर जगह पर.
1: सिंध की आवाज
2: जीए FM 88 नेटवर्क.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा. 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
4: छा तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर ही के अहड़ी जाए थे ठहर चाहे था जिते हो जे तहफुज जदी सहूलतों आई मंजूर थे सिक्योरिटी
5: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
4: सखर शिकारपुर रोड ते
5: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल सामने
4: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थे
5: एक शानदार आई काबिले एतमाद रिहाइश.
6: अदी छा गाला एडो खुश पई नजर अची.
7: हाँ भेण बस खबर ही कुछ अड़ी हाने सा और तू भी पैंजी तकलीफ आसानी से बुधाए सकूं थियो.
8: जी हाँ, सिंध जी पहरी फीमेल यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी जै पेंजी FCPS यूरोलॉजी जी डिग्री मा लखे रुपया कमाण बदरा लाड़काने में औरतुन लाए फ्री अस्पताल शुरू कई आहे, जिते बुकिंग जी बीमारिन मसलन पेशाब में रुकावट, जलन ए साड़ो, जख्म, बेउलादी, बुक्की ए मसाने जी नाली में पथरी जो ऑपरेशन जदीद लेजर ए चीरे वसीले करे थी. याद रखंदा डॉक्टर साहिबा चकास बुकिंग जो अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त कंदियो आहिन. बस कमरे दवा जो थोरो खर्च मरीज पान भरींदा. हाँ, एक्सरे, IVP सीटी स्कैन पिण अध पैसन में कराए दे थी. पेशावराना डॉक्टर डा मरीज खड़ी वींदड़न जे भुलाइण ते तवज्जो न दियो. एड्रेस अल निसा मेडिकल सेंटर, नद सिटी चौक, सचल कॉलोनी, लाड़काणो. टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 9 बजे ताईं, आचर ते मंझन जो 12 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं. राबते जे लाइ मुस्लिम अब्बासी मोबाइल नंबर 0334224 1869.
9: निसा खैर तो आहे, कायदो घुमी धक लगो तई छा?
10: हाओ यार अब्दुल्ला, एक्सीडेंट में जंघ जो हडो भजी पियो आ. तोखे त खबर आ गरीबी हाल आ, पैसा भी कोनन के. सोचा तो ऑपरेशन किथा.
11: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज. बुधंदा रहो.
12: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
13: उसी खित्ते की बनी है आवाज.
12: GA FM नेटवर्क,
13: सिंध की आवाज.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हब की फरमाइश पर हुसन वारन जो मुसन बिसवा। लेकिन उससे पहले जनाब लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी हेलो। ओए होए जी ना, हमारे साथ लोग आते हैं फिर थोड़े से उनको आवाज नहीं आती तो वो कॉल डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब के रसना सबनी सांगर
1: भाई हबीबुल्ला सलाम जी
0: हबीबुल्ला भाई के हाल चाल सब ठीक ठाक है हो
1: खैर सही गांव लग पंचान
0: सफा मजे में हबीबुल्ला साहब। ये बुधायो त जेको आहे मां गानो तो हलाया उथंदे वेहंदे हुस्न वारन जो मु दिसण बि सवाब कहें जे नाले था करना चाहियो
1: मुंहिंजा भाइर आहिनि
0: जी जी
1: जमील अहमद सोलंकी रफीक सोलंकी अब्दुल गनी सोलंकी गुलाम मेहर सोलंकी वसीम सोलंकी।
0: अच्छा
1: हाजिर हाजिर सर
0: सही सही मेहरबानी सोलंकी साहब पंहिंजो ख़ासि ख़्याल रखिजो।
1: हलो
0: मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। जी जनाब हमारे साथ थे सोलंकी भाई और इनको सुनवाते हैं बहुत प्यारा सा गाना उथंदे वेहंदे हुसन वारन जो जेको आ मुंह ॾिसण बि सवाब आ। अली गुल मीरानी साहब मौजूद आहे असां सभिनी सां गॾु, हुन जी फरमाइश ते प्ले करे चुका आहियूं त ॿुधो ऐं खोड़ सां एंजॉय कयो।

0: तहजीब सकाफत से सजी, जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM 88 की आवाज,
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
0: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GAFM नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।

राष्ट्रीय दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब कोइटिया मस्तों कलात ऐं सिबीअ में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयूं कयूं वयूं। कोइटिया जे इलाइक़े शाबान में फितना अख़बार जे चइनि ठिकाणनि खे निशानो बणाए 26 ख़ारिजनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। मस्तोंग में ऑपरेशन दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 6 दहशतगर्द बि मारिजी विया। कलात में छापे दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 2 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। दहशतगर्दनि वटां हथ आयल बारूदी मवाद ऐं देसी साख़्ता बम मौके ते तबाह कया विया। जारी ऑपरेशन दौरान 72 कलाकनि में मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग 48 थी वियो। बलोचिस्तान में 2026 दौरान ऑपरेशन में 1188 खां वधीक दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। अज़म इस्तेहकाम तहत आख़िरी दहशतगर्द जे ख़ात्मे ताईं कार्रवाइयूं जारी रहंदियूं। खिते जे सालसन अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जी बहालीअ लाइ नए फ्रेम वर्क ते कम शुरू करे छडि॒यो। बरतानवी मैगज़ीन फाइनेंशियल टाइम्स पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ओमान ऐं कतर तहरान ऐं वॉशिंगटन विच में ॻाल्हियुनि जी बहालीअ लाइ नए फ्रेम वर्क ते कम करे रहिया आहिनि। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस अमरीका में तेल जे अघनि में वाध जो ज़िमेवार ईरान खे करार ॾेई छडि॒यो। ॻाल्हियुनि जी बहालीअ लाइ आबदा हुरमस खोलण जो

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: ठीक है, थैंक यू सो मच माहिरी तां लिया फौजिया जो मारवाड़ी गीत हलाया तो थैंक यू सो मच जी। जना हमारे साथ दिलीप कुमार भाई फ्रॉम थर्ड पार्कर, और जनाब आप हमारे साथ आ सकते हैं 03000113488 पर। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम
3: जी जनाब, खैर है सबनी सा गड जी। कुर्बान भाई ताजी फाइनली आवाज असा ताई पहुंची आहे, छो ता ताजी पहली आवाज न पई पहुंचे। केड़ा हाल चाल है तवाजा?
4: अल्हम्दुलिल्लाह।
3: हाँ बिल्कुल एवन, बिल्कुल मजे में। तुम बुधायो केड़ा हाल चाल तवा? हाँ तवाजे सिग्नल अजा भी प्रॉपर तरीके से कौन था अचन? तवाजे सिग्नल अजा भी प्रॉपर तरीके से कौन था अचन? छो तो ताजी आवाज थोड़ी कटजी पई अते अचे मोडे।
4: सिंगुलर में वो इशू है।
3: जी जी जी बिल्कुल। ब्याह कुर्बान भाई खुश आए हो, मजे में आए हो?
4: दुआ लगी अल्हम्दुलिल्लाह।
3: हाँ कुर्बान भाई गानो तो हलाया फौज या सुमर जो हेवड़लो मथे हारिया जाएड़ा जानियड़ा, यो कें जना से करना चाहो?
4: खालिद लाचारी अजीज सलमी अजीज जरवार गुलाम परी गुड भी सरवा गुलाम रही बलोच
3: जी
4: दिलीप कुमार
3: अच्छा जेके बुधा था सभी जला। थैंक यू कुर्बानी खास के लिए भाई ताजो तमाम घणो थैंक्स। हुबदार अली शेख अस्सलाम वालेकुम चवन था। मोहम्मद अशफाक खान जी मुझा प्यारा भा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, शो इज वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम तमाचानी सखर। तमाचानी सखर का असाके मैसेज किया, थैंक यू सो मच। असा सभी सा गड आहिन हकीम मसूद अहमद जमाली नूर मोहम्मद लाशारी कंदकोट का मोहम्मद बिलाल जमाली कामरान जमाली गोठ बचल शामयानी सखर का अमां जो प्रोग्राम पसंद कंदा आहियूं। ज़ीशान रोकड़ी जी आवाज में सोनिया अखा बुधायो। ओके जनाब ज़ीशान रोकड़ी भी असा प्ले कंदे सोनिया अखा। थैंक यू हकीम मसूद अहमद जमाली नूर मोहम्मद लाशारी फ्रॉम कनकोट मोहम्मद बिलाल जमाली डॉक्टर कामरान जमाली गोठ बतल शामयानी सखर का तमाम असाजे प्रोग्राम के पसंद किया है, ताजो फरमाइशी गीत जरूर हलाइंदे। थैंक यू सो मच हकीम मसूद अहमद जमाली भाव। और जनाब अब लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। खालिक भा जलूरिया खान के हाल चाल है? ठीक ठाक थैंक यू सो मच यार। तुम्हारी जका या गाली में जो है ना असो दिल हे एडो वडी करी छदी आन बेओ खालिक भा ठीक फौजिया सुमरो जो एक गानो प्ले कयो पर एक गानो हाणे मारवाड़ी में तो प्ले क्या जेका दिलीप भाई फरमाइश कई आहे उहा मैं प्ले तो क्या
4: ना
3: सर
4: तो
3: इो गानो भी इंशाल्लाह हलायूं था थोड़ी देर में
4: थैंक यू सो मच।
3: जी जनाब हमारे साथ थे बहुत प्यारे से दोस्त हमारे खालिक लाशारी भाई, और खालिक लाशारी भाई के बाद हम बात करते हैं फौजिया सुमरो की जिन्हें हकीमा भी कहा जाता था, जो गाने के गुलकार अजीम गुलकार हाजी नथू सुमरो की बेटी थी। इन द सोर्सेस वसाइल की कमी की वजह से उनके वालदैन सिंध में टंडो मोहम्मद खान मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने कम उम्र में ही गाना शुरू कर दिया। रिसोर्स के मुताबिक फौजिया बहुत कदामत पसंद खानदान की वजह से जनाब उन्होंने 16 साल की उम्र में समझदारी से गाना शुरू किया, और रेडियो पाकिस्तान से उनका तारुफ नसीर मिर्जा के जरिए हुआ, जिन्होंने उनके साथ दो गाने रिकॉर्ड किए, कदर ना किया करो और छड़े वाई छड़े साथी सुखनजा। दोनों गाने फौरी तौर पर हिट हुए, उनको शोहरत हासिल हुई। वो थारी और मारवाड़ी जबानों में भी गाने गाती थी बिल्कुल, और जब हम ये गाने सुनते हैं तो हमें एक अलग ही दुनिया में ये गाने ले जाते हैं और बहुत बहुत सुन के मजा आता है। तो जनाब वो शादियों के मौके पर भी परफॉर्म करती थी और मुख्तलिफ سماجی مواقع پر بھی وہ پرفارم کرتی تھیں. اور فوزیہ نے پاکستان فوزیہ سمرو کو پاکستان کی سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی انہوں نے تعریف میں گانا بھی گایا تھا اور انہیں شاہ لطیف ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. انفارچونیٹلی ان کی انتقال 4 ستمبر 2002 کو ہوا کڈنی فیلیور کی وجہ سے. تو جناب فوزیہ سمرو اب ہمیں نہیں, لیکن ان کے جو گانے, ان کے جو سر ہیں, ان کی جو آواز ہے وہ آج بھی ہمارے کانوں میں رس گھول رہی ہے. تو کیوں نہ آپ کو سنوایا جائے فوزیہ سمرو کا ایک بہت پیارا سا گانا. ایک گانا ہم پہلے پلے کر چکے ہیں, ایک گانا بھی پلے کرتے ہیں اور ایک گانا اور بھی پلے کریں گے انشاءاللہ اپنے دوستوں کی فرمائش پر. تو ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں فوزیہ کا یہ زبردست سا ٹریک, جسے سنیں اور جناب جو کہ ہمارے کانوں میں رس گھول رہا ہے. اور یہ گانا جو ہے دلیپ

0: Canorlai Hot Shot Authentic Global Flavors.
1: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अप्लाई. आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स.
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो.
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज.
4: जीए FM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: नानो समन मेरा नहीं बतायो
1: केड़ो
0: बिछड़ी वे तू तो भी रग रग में रहे तो।
1: अच्छा बिछड़ी वे पो भी रग रग में रहे तो
0: पुरानो गानो है।
1: अच्छा बिछड़ी वे तू बाय शमन ओके कहें जना से करना चाहो
0: व्यासी अब्दुल जबार को तो मोहनदास को तो सत्यारानी को तो तवा के नाले तवा की पूरी टीम के नाले
1: सही सही
0: हाँ याद है क्या कर देर तो गला है
1: जख्मी खादिम हुसैन को
0: फ्रॉम
1: टंगवाणी बिल्कुल जनाब बिल्कुल टंगवाणी वाला ठीक ठाक है मजे में आने
0: जी जी आसान नालो तो अपन हाथ से लिखी चले हम
1: मां हाथ से सा दिल से लिखा तो ने
0: दिल से लिखी चले
1: ठीक ठीक ठीक ठीक बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू जख्मी खादिम भाई थैंक यू सो मच मेहरबानी जी जनाब हमारे साथ जख्मी खादिम भाई और जख्मी खादिम भाई के बाद देखते हैं कि हमारे साथ सही सलामत कौन है और ये वाकई सही सलामत है या इनको भी कोई जख्म वखम मिले में पूछते हैं इनसे अपने कॉलर से हेलो हेलो हेलो हेलो ओ माय गॉड अगेन प्रॉब्लम आ जाती है हमारी लाइनों में पर क्या करें क्या कर सकते हैं एनीवे कोई बात नहीं और हम चलते हैं मैसेजेस की जानिब तब तक जनाब आपके प्यारे प्यारे से मैसेजेस शामिल शो करते जाएं हुबदार अली अगेन कहते हैं ऐसे वैसे वैसे कैसे हैं देखो ना ये लोग भी कैसे कैसे हैं क्या तुमने नजदीक से देखे तन्हाई उसके सारे रूप मेरे जैसे हैं क्या बात है यार ऐसे वैसे वैसे कैसे हैं देखो ना ये लोग भी कैसे कैसे हैं क्या तुमने नजदीक से देखी तन्हाई उसके सारे रूप मेरे जैसे हैं क्या बात है यार जबरदस्त शायरी आपने वहां से हमें दे मारी है और बहुत प्यारी सी है बहुत मजे की शायरी है आप इस तरह के दो चार और शेर जनाब हमें सुनाएं हमें लिख के भेजें ताकि हम वो पढ़ें बड़ा मजा आता है शायरी पढ़ने में कभी कभार और शाम के चलते साए इस वक्त बहुत से लोग बाहर निकले होंगे बहुत से यंगस्टर्स जेन जी और बहुत से लोग जो कि रफ ड्राइविंग करते हैं और हम बार बार कहते हैं बार बार प्रोग्राम्स में अनाउंस करते हैं कि यार ऐसा मत कीजिए कि आप रफ ड्राइविंग बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि रफ ड्राइविंग ना सिर्फ आपकी जिंदगियों को खतरे में डालती है बल्कि रोड पे चलने वाले दूसरे लोग रोड पे सफर करने वाले दूसरे लोगों के लिए भी वबाले जान बन जाती है तो हम ये चाहते हैं कि जनाब आप रफ ड्राइविंग ना करें ताकि आपकी जिंदगियां भी सेफ रहें रोड पे चलने वाले जिंदगियां भी सेफ रहें और किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे और हमेशा आप हंसते मुस्कुराते रहें अस्सलाम वालेकुम हेलो जी जी केर असा सभी से कर निसार अहमद पिताफी साहब तव अचानक गलायो मुझे छिरक कटी चया अव निसार भाई छा कंदा आयो माशाल्लाह निसार भाई तव अस प्रोग्राम के लगे है जीएफएम एटीआर बुधा आयो
0: जी सही बुधा आयो
1: माशाल्लाह माशाल्लाह निसार भाई गानो केड़ो बुधन चाहो था फरजाना परवीन जो हलाया तो कें जे नाले करना चाहो मुख्तियार
0: कोई मर्जी
1: न बस ती फरमाई जरूर प्ले कर करना चाहो
0: जी साई पप्पू पिताजी
1: जी जी
0: वकार पिताजी
1: बस
0: चलता
1: ठीक है थैंक यू निसार भाई पांजो खास ख्याल रखो
0: थैंक यू
1: निसार भाई हमारे साथ है मुख्तियार शीदी फरमाइश करना चाह रहे हैं अभी दो फरमाइशें पेंडिंग में हैं शमन अली मिराली की भी फरमाइश पेंडिंग में है और जनाब फरजाना परवीन की फरमाइश भी पेंडिंग पे है अब्दुल्ला भंगवार साहब ने की थी वो गाना जरूर चलाते हैं अभी लेते हैं शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
1: जी जनाब खेर सा सबनी सा गडो
2: सोना साईं जायद अली जट्टे पे बोलाए की शाबे ले गए
1: जायद भाई केड़ा हाल चाल है
2: भलाएं कर दुआ शुक्र प्यारा बात नाम बुधायो पियायो कुछ आयो
1: फर्स्ट क्लास तां भारें जे दुआओं यो बुधायो शो किए तो लगे तां के
2: सोना साईं जे सच पुछो त इलाही टाइम खां पो असां अॼु तव्हांजो शो बुधो आहे तमामु

0: सुठियूं पियो लॻे हिन शाम जे थधिड़े पारां ॿुधो
1: भला हेतिरे अर्से किथे विया हो
0: बस हुया रे ग़रीब पंहिंजे मिड़े कमनि कारण में मजबूरी पर कोन पिया ॿुधऊं वरी अॼु ई ॿुधो पर सच पुछो असांजे प्यारा बाबा ॾाढी ख़ुशी थी वियो दिलि खे शामिल थी वञा
1: वाह वाह ऐं तव्हांजे दिलि जे दिलि सां राह हुई ऐं तव्हांजी कॉल बि लॻी वई ॾिसो
0: कॉल बि मिली वई हींअर ई पर कॉल बि शुरू कयां पर प्यारा बाबा तव्हांजो फोन ते आवाज़ क्लियर न पियो अचे रेडियो ते ॿुधी ॻाल्हायां
1: अच्छा चलो ठीकु आहे यार कोई न उहो मसलो हूंदो ई हूंदो आहे फोननि में लाइननि में पर कोई मसलो न आहे तव्हांखे अगरि आवाज़ अचे थी त तव्हां भले रेडियो में ॿुधो मूंखे कोई मसलो न आहे अलहमदुल्ला अदा कॾहिं जो फरमाइश कई आहे मूंखां अब्दुल्ला भंगवार साहब फरज़ाना परवीन जो गानो आहे उहो ॿुधायां थो कंहिंजे नाले करणु चाहियो
0: प्यारा भाउ तव्हांखे डेडिकेट कंदासीं ऐं जेके बि दोस्त पिनी प्यारा ॿुधंदा सभिनी खे सॉन्ग डेडिकेट
1: वालेकुम असलाम ऐं सभिनी खे डेडिकेट ज़ाहिद जतोई जी तरफ़ां ठीकु आहे दा

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई
3: सदर आसिफ अली ज़रदारी के इत्माद में वठण की कोशिश सदर आसिफ अली ज़रदारी सिंध के वे वजीर फवाद अली शाह फयाल टालपुर सैयद नासिर हुसैन शाह के लंदन सदाए वरतो इजलास में 28 आइनी तरमीम बाबत अहम फैसलों को इम्कान खिते के सालिसन अमरीका ईरान विच में गालियन की बहाली लाए नए फ्रेमवर्क ते कम शुरू कर छो बरतानवी मैगजीन फाइनेंशियल टाइम्स पैंजी रिपोर्ट में जानायो है ओमान कतर तेहरान वाशिंगटन विच में गालियन की बहाली लाए नए फ्रेमवर्क ते कम करे रहा आहिन।

0: मिश्री और बादाम, कश्मीरी गोल्ड मेवा, मस्ती भरा मजा।
1: सोलर है बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में ते जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
0: कोकोनट कानट चबाने का कट, स्वीट हिल नट कट, कोकोनट फिल्ड कैंडी,
2: अर्जेंट ब्यूटी क्रीम हर किस्म के स्किन को दे फ्रेश ग्लो और गोरी रंगत। अर्जेंट ब्यूटी क्रीम।
0: अब आम का जूस, गोली में जूस, स्वीट हिल की मैंगोली कैंडी।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रर डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
0: गर्मी हो या मूड ऑफ, स्वीट हिल की हो फिट करे कूल कूल।
2: अर्जेंट ब्यूटी क्रीम हर किस्म के स्किन को दे फ्रेश ग्लो और गोरी रंगत। अर्जेंट ब्यूटी क्रीम।
0: अब दूध पीने का नहीं, खाने का। स्वीट हिल डॉक्टर।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है,
2: खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर फादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को नाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हक सच जो गीते हैदराबाद सिंध जो आवाज उदंदा रहो।
2: जिस धरती से जी

0: जिस धरती
1: इसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज गीत से हैदराबाद 1.6 सिंध जो आवाज उतरदा रहो।
0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: GA FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए
3: हर शहर में साजिश रहे लेकिन असा दबाव जी असा दबाव बदा से दबाव में चढ़ रहा हूं जो पास धरती माओ जो मतलब यूरिया पूरी सिंधु है ना वो अज रखो ही अजय छा है।

0: हिकु आहे हिकु ई रहंदी। जेकॾहिं को दबाउ हुजे हा त एॾो बहस ई कोन थे हा। ठहराउ कीअं पास थे हा? जिन तनक़ीद कई उहे बि चवनि था सिंध असांजी माउ आहे।
1: सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बलोचिस्तान में फितना हिंदुस्तान ऐं फितना ख़्वारिज ख़िलाफ़ कार्यवाहियूं 24 कलाकनि दौरान वधीक 36 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब कोइटिया, मस्को, कलात ऐं सिबीअ में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्यवाहियूं कयूं वयूं। कोइटिया जे इलाइक़े शाहबान में फितना ख़्वारिज जे चइनि ठिकाणनि खे निशानो बणाए 26 ख़ारिजनि खे मारियो वियो। मस्को में ऑपरेशन दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 6 दहशतगर्दनि खे बि मारियो वियो। कलात में छापे दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 2 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। दहशतगर्दनि वटां हथ आयल बारूदी मवाद ऐं देसी साख़्ता बम मौके ते तबाह कया विया। जारी ऑपरेशन दौरान 72 कलाकनि में मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधी 48 थी वियो। बलोचिस्तान में 2026 दौरान ऑपरेशन में 1188 खां वधीक दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। वज़ीर आज़म पारां कामयाब कार्रवाई ते सिक्योरिटी फोर्सिस खे भेटा पेश।
0: हिते जे सालिसन अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ नए फ्रेम वर्क ते कम शुरू करे छॾियो। बरतानवी मैगज़ीन फाइनेंशियल टाइम्स पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ओमान ऐं कतर तेहरान ऐं वॉशिंगटन विच में ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ नए फ्रेम वर्क ते कम करे रहिया आहिनि।
1: अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस अमरीका में तेल जे अघनि में वाध जो ज़िमेवार ईरान खे करार ॾेई छॾियो। ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ आबनाए हुरमस खोलण जो बि शर्त रखी छॾियो। व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे जेडी वेंस चयो त आबनाए हुरमस में तेल बरदार जहाज़नि ते ईरानी हमलनि सबबि अमरीका में तेल महांगो थी रहियो आहे। कुझ जहाज ईरानी हमलनि सबबि आबनाए हुरमस मां गुज़रण नथा चाहिनि। जेके गुज़री रहिया आहिनि उन्हनि खे अमरीका सिक्योरिटी फराहम करे रहियो आहे।
0: अरब मुल्क ऐं ईरान जी ख़ुदमुख़्तारी जो एतराम न कंदड़ मुल्क खे जवाब ॾियण लाइ केसिताईं इंतज़ार करणु घुर्जे? ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराकजी जो उर्दनी हम मनसब जे बयान ते जवाब। अब्बास इराकजी चयो त ईरान ते हमलनि लाइ अरब मुल्कनि जी ज़मीन ऐं फिज़ा इस्तेमाल कई आहे। शायदि उर्दनी परडेही वज़ीर खे ख़बर न आहे।
1: मुश्किल फैसलनि सबबि मुआशी इस्तेहकाम आयो आहे। पाकिस्तान खे ॿीहर उरूज ऐं ज़वाल वारे मुआशी चक्कर में वञण न ॾींदासीं। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जो चवण हो त मुल्क में सीड़पकारी वधाइण लाइ सीड़पकारनि खे सहूलियतूं ॾेई रहिया आहियूं। मुआशी तरक़ीअ खे जटादार इस्तेहकाम तरफ़ वठी वञणो आहे। बुनियादी सुधारनि वारो सिलसिलो बि जारी रखियो वेंदो। ख़ानगी शोबे खे मुल्क जी मुआशी क़यादत करण जे क़ाबिल बणायो वेंदो।
0: सिंध जे सीनियर वज़ीर शजील नामेमन जी सदारत हेठि ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास। पीपल्स बस सर्विस, डबल डेकर बसेस, ईवी टैक्सी ऐं पिंक स्कूटी मनसूबनि ते गौर। ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त कंबर शिदादकोट ऐं लाड़कणो रूट ते पीपल्स बस सर्विस जल्द शुरू कई वेंदी। शजील मेमन चयो त नवनि रूट्स ते बस सर्विस लाइ समूरा इंतज़ाम मुकमल कया वञनि। पीपल्स बस सर्विस जो दायरो वधाइण जो मक़सदु आवाम खे बहितर ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत फराहम करणु आहे।
1: स्ट्रीट मूवमेंट जे सिलसिले में सिंध में पहुतल केपी जो वॾो वज़ीर सुहेल आफरीदी जेकबाबाद, शिकारपुर, गढ़ी यासीन ऐं शादादकोट खां थींदो कंबर पहुतो। पीटीआई कारकुननि पारां शानदार आजियां। सुहेल आफरीदी चयो त इस्लामाबाद में 27 सेप्टेम्बर ते रिथियल जलसे जी कामयाबी लाइ सिंध आयो आहियां। हुकुमराननि जो ॾाड ऐं जबर आहे। पीटीआई बानीअ खे घर भातियुनि सां मिलण बि नथो ॾिनो वञे। बानी जो शिफ़ा इस्पताल में इलाज न कराए सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम जी भञकड़ी कई वई। हक़नि लाइ अवाम खे रोडनि ते अचणो पवंदो।
0: एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन CSS इम्तिहान में उमिरि जी हद 30 मां वधाए 35 साल ऐं शिरकत जा मुखिया 3 मां वधाए 5 करण वारियूं सिफ़ारिशूं रद्द करे छॾियूं। पार्लिमानी कमेटी आॾो लिखत मौके पेश। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन चयो आहे त उमिरि जी हद या इम्तिहान में शिरकत जा मुखिया वधाइण वफ़ाक़ी हुकूमत जी पॉलिसी इख़्तियारनि में शामिल आहे। FPSC रुगो हुकूमत तर्फ़ां मंज़ूर कयल पॉलिसी ते अमल करे थी। عمر کی حد ای شرکت جا

0: मुखिया वधाइण सां उम्मीदवारनि जे अंग सां गॾोगॾु इंतज़ामी भार बि वधी वेंदो। सेनेट जी ज़ेली कमेटी उमिरि जी हद ऐं इम्तिहान में शिरकत जा मुखिया वधाइण जी सिफ़ारिश कई हुई।
1: कराची जे इलाइक़े डिफेंस में पुलिस अहलकारनि जी मौजूदगीअ में बासर औरत पारां भेण ऐं भाउ ते तशद्दुद वारे केस जी जांच में SSP कोरंगी फिदा जामरी बि ज़िमेवार करार। ज़रियनि मूजिबि जांच रिपोर्ट में चयो वियो आहे त SSP फिदा जामरी पारां मामले में इंतज़ामी गफ़लत कई वई, संदसि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। मुतासिर कुटुंब ख़िलाफ़ दाख़िल केस बि क्लास कयो वियो। राशिद अली SI पुलिस मोबाइल आफ़ीसर आफ़्ताब मंगी ख़िलाफ़ बि खातेवार कार्रवाई जी सिफ़ारिश। वीडियो में तशद्दुद कंदे नज़र ईंदड़ औरत, संदसि धीअ ऐं पुट ते केस दाखिल करण जी बि सिफ़ारिश कई वई। DIG ॾखिण असद रज़ा जो चवण हो त वीडियो में मुतासिर कुटुंब ते तशद्दुद कंदड़ सभई माण्हू SSP फिदा जामरीअ जा वेझा माइट आहिनि। जांच रिपोर्ट जी रोशनीअ में ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कानून मुताबिक़ कार्रवाई थींदी।
0: सिंध पैरादस इम्प्रूवमेंट मनसूबे में अरबे रुपयनि जी बेज़ाबतियुनि जो इंकशाफ़। पैरादस मनसूबे जी नाक़िस रिथाबंदी ऐं देर ते वर्ल्ड बैंक जा संगीन एतराज़। मनसूबे में देर सबबि क़ौमी ख़ज़ाने ते 10.47 अरब रुपयनि जो वाधू बार पियो। पैरादस जी बहाली वारे मनसूबे में वाधू ख़र्चनि वारो बार अवामी ख़ज़ाने ते मुंतक़िल थियण जो बि इंकशाफ़।

कराचीअ जी अदालत पीउ ऐं धीअ खे गाॾी जी टकर में मारींदड़ औरत नताशा खे मंशियात केस मां बरी करे छॾियो। जवाबदार जी वकील अदालत खे ॿुधायो त केमिकल एग्ज़ामिनर ऐं ब्लड टेस्ट में नताशा जे रत मां आइस जी मौजूदगी साबित नाहे थी। पुलिस पारां नताशा जे वरितल नमूननि सां टेम्परिंग कई वई। जांच आफिसर ब्लड टेस्ट जी रिपोर्ट लिकाई हुई। पुलिस मूजिब नताशा मर्कज़ी केस मां अॻी बरी थी चुकी आहे। हादसो अगस्त 2024 में पेश आयो हो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

सायण और दोपहरियन की आवाज में तमाम खूबसूरत ट्रैक सजी सिंध वारन जे नाव नई आहे नित नाज़वारन जी बोली निगाहुन अदाउन इशारन जी।

0: अवां बुधी रहा हो प्रोग्राम दिल जी गाल आऊं आया अबिद चौहान हिन वक्त थियो आहे हिकड़े नंढड़े ब्रेक जो ब्रेक खां पोइ अवां जूं कॉल्स बि अटेंड कंदासीं ऐं अवां सां कंदासीं खोड़ सारियूं दिल जूं ॻाल्हियूं त पोइ ॿुधंदा रहो GFM 88 नेटवर्क
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
2: वादी मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by
4: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: GFM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: इहो
1: जेकॾहिं झूंगारे ॿुधाईंदो त मज़ो अची वेंदो प्रोग्राम में।
0: लकी सरकार जो हिकिड़ो
1: क्या बात आहे साईं। ॿियो को दोस्तनि जो को पैगाम, को प्यार जो का ॻाल्हि?
0: पैगाम इहो ई आहे त प्यार ऐं मोहबत सां रहो, मोहबत में मज़ो आहे।
1: वाह वाह।
0: नफ़रत कोन्हे, नफ़रत माना थींदो आहे मोहबत में मिठाण।
1: क्या बात आहे।
0: मोहबत सां रहो ऐं प्रोग्राम तव्हांजो ज़बरदस्त आहे सर। ट्राए करे करे
1: असां हथ बधी के कार ॿुधी रहिया आहिनि, उन्हनि सां कचहरी करे ॻाल्हि ॿोल करे असां पहिरीं ब्रेक खां पोइ कमिटमेंट कईसीं त कॉल अटेंड कंदासीं। कॉल अटेंड थी वई। प्रोग्राम राइट 9 वॻे स्टार्ट थींदो आहे, 9 वॼी 10 खां 15 मिंटनि ताईं। उन खां पोइ ब्रेक ईंदी आहे जॾहिं 9:30, उन खां पोइ असां कॉल अटेंड कंदाऊं।
0: ॾाढी ख़ुशी थी अव्हांजे प्रोग्राम में महिरबानी करे टेम ॿुधाईंदा में ऐं जेको
1: नंबर
0: आहे प्रोग्राम में तव्हां अर्ज़ु खां।
1: जी जी, अव्हां किथां कॉल कई आहे, कहिड़े शहर इलाइक़े खां?
0: सर मोरो खां, त्रिमूर स्टाफ
1: मोरो खां। मोरो खां, ठीकु आहे। मुंहिंजे साईं प्रोग्राम जो टाइम अव्हां लाइ 2 कलाक ई हूंदो आहे पूरो।
0: सर उहो त आहे, अञा वधाए बहितरीन थींदो छो जो असांजी जेका ट्रांसमिशन
1: जेकॾहिं वधायूं त पोइ मां राति जी मानी त कोन थो खाई अचां, पोइ सुबुह जो नेरन बि हितां करे
0: निकिरां।
1: सलामत हुजो, शाद हुजो, आबाद हुजो। ॿुधंदा रहो GFM 88 नेटवर्क।

जी दोस्तों, यह मां जो मान मोहब्बतों प्यार है जो असा के हते एफएम 88 ते आंदो है आवां सा गद दिल जी गाल कर रहा हूं। आवां भी पहजे दिल जी गाल असा सा कर सकदा। कॉलर असा सा गद लाइन ते मौजूद है।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
4: Jildi Allergy aur Kharish ke liye mufeed hai
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News
6: Brought to you by
7: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
8: उसी खिते की बनी है आवाज
7: GAFM Network
8: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी
1: नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक आज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।